0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना हाल ही में 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें लिखते हैं, यह अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समय की चुनौतियों का सामना अपने विचारों की स्पष्टता और उत्तरदायित्व में कैसे करते हैं। हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम पर्याप्त नियमावली को लागू करते हों, जो न्याय को स्थापित करने और तकनीकी शक्ति के विकृत प्रभाव पर रोक लाने का साधन बनता हो। इसके बावजूद यहाँ हम मुद्दे को सिर्फ नीति निर्धारण तक सीमित नहीं पाते हैं, जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने हमें सचेत कराया है। हमें अपने को सही अर्थ में पूछने की जरूरत है, जो शक्ति को अपने में वाहन करते हैं, हम उसका उपयोग किस रूप में करते हैं। हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि न्यूक्लियर शक्ति, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना की तकनीकी, हमारे अपने DNA का ज्ञान और दूसरी कई काबिलियतें जिन्हें हमने हासिल की है, जिनके पास यह ज्ञान है और खासकर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आर्थिक संसाधन, पूरी मानवता और पूरी दुनिया पर एक जबरदस्त दबदबा कायम किया है। अतीत में यह सरकार के ऊपर निर्भर करता था कि वे नवीनता के संबंध में दिशा निर्देशन जारी करें। आज यद्यपि विकास के मुख्य कर्ता धर्ता व्यक्तिगत रूप में मुख्यतः ट्रांसनेशनल पार्टियां हैं, जिनके पास कई सरकारों से ज्यादा संसाधन और दखल देने की क्षमता है। इस तरह तकनीकी शक्ति एक ऐसा रूप ले लेती है जो पहले कभी नहीं हुआ। यह ज्यादातर निजीकरण के रूप में होता है, जिससे ऐसी शक्ति को पहचानना, नियंत्रण करना और आम भलाई के लिए इस्तेमाल करना और भी मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, यही कारण है संत पापा लियो लिखते हैं कि हमारे लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम आत्म परीक्षण की एक साझा प्रक्रिया की शुरुआत करें, जो हम में होने वाले परिवर्तन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को पहचानने में मदद करेगा। यदि हम सिर्फ आकस्मिकताओं पर ध्यान देते हैं, तो हम इमरजेंसी के बाद आने वाले हालात से अपने लिए एक जोखिम को पाएंगे। हम एक तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन के दौर में जीवन यापन कर रहे हैं, एक परिवर्तन के युग में जिसमें कुछ लोग नई प्रौद्योगिकियों के भविष्य की होड़ में हैं, तो दूसरे इस मामले पर चिंतन करने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। वहीं अधिकांश लोग देखने और प्रतीक्षा करने में हैं, दूर से निरीक्षण कर रहे हैं और केवल सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में लगे हैं। इसी कारण से जरूरी सवाल हमारी अंतरात्माओं में उठते हैं और जिन्हें हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? किस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने की चाह रखते हैं? एक मानव समुदाय, लोगों के रूप में हम किस दिशा में जाने का चुनाव करें? इन सवालों का जवाब देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के काल में अपने को सही दिशा में निर्देशित करने हेतु संत पापालियो लिखते हैं, मैं धर्म ग्रंथ के दो दृश्यों को आपके मनस पटल में लाना चाहूंगा, बाबिल मीनार का निर्माण और यरूशलेम की दीवार का पुनर्निर्माण। बाबिल के मंदिर की कहानी उत्पत्ति ग्रंथ में आती है, मानवता की शुरुआत में, नोआ के पुत्रों की वंशावली के तुरंत बाद। शिनार की भूमि में स्थापित होने के बाद लोगों ने एक शहर और एक मीनार निर्माण करने का विचार किया जिसकी ऊंचाई स्वर्ग को छूती हो। यह धरती में भय को प्रसारित करता है। वे अपने में स्थायित्व और शक्ति को सुनिश्चित करने की चाह रखते हैं, उससे भी बढ़कर अपने लिए एक नाम हासिल करने की चाह। यह एक शानदार काम था, एक भाषा, एक तकनीकी, एक दिशा, लेकिन इस परियोजना में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था। इस परियोजना की शुरुआत ईश्वरीय सहमति के बिना हुई थी, जिसमें एक रूपता का सहयोग था जो विभिन्नताओं को खत्म करती और एकता के बदले एक रूपता को प्राथमिकता देती थी। जब एक शहर का निर्माण घमंड और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता में होता है, संचार का सिलसिला टूट जाता है, भाषा में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और लोगों में एक दूसरे को समझने की योग्यता खत्म हो जाती है, इसका परिणाम एकता नहीं बल्कि बिखराव होता है। बाबिल का मीनार इस भांति किसी भी प्रयास की सीमाओं को प्रकट करता है, जो चाहे कितना भी भव्य हो, जो आत्म पुष्टि से उत्पन्न होता है, दक्षता के लिए मानवीय गरिमा का त्याग करता है और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना स्वर्ग तक पहुंचने की इच्छा रखता है। श्रोताओं, इसके विपरीत नबी नहमिया की पुस्तिका हमारे लिए प्राचीन इसराइल के इतिहास की एक अति संवेदनशील स्थिति को प्रस्तुत करती है। बाबिलोन निर्वासन के उपरांत कुछ लोग यरूशलेम लौटकर आए, लेकिन शहर अब तक खंडहर की स्थिति में था। उसकी दीवारों को ढह दिया गया था और द्वारों को जला दिया गया था। नहमिया एक यहूदी जो फारसी राजा की सेवा में नियुक्त था, उसे अपने पैतृक शहर की दयनीय स्थिति की खबर मिली। अपने निर्णय और कार्य शुरू करने के पूर्व उन्होंने उपवास, प्रार्थना और लोगों के लिए निवेदन किए। इसके बाद उन्होंने राजा से यरूशलेम लौटने की अनुमति मांगी और वहां पहुंचने के बाद चुपचाप विध्वंस क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी ओर से निदानों को नहीं थोपा। उन्होंने परिवारों को बुलाया और दीवार के एक भाग का पुनः निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने उनकी बातों को सुना, उनकी कोशिशों का संचालन किया और कोई विरोध होने पर उनकी चर्चा की। यह वृतांत हमें यह दिखलाता है कि शहर का पुनर्जन्म कैसे हुआ। इसकी पहल किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई, लेकिन इसके लिए सभों ने अपने उत्तरदायित्वों को साझा किया। नर नारियां, पुरोहितगण, शिल्पकार, घरों के प्रधान और युवाओं, सभों ने अपनी ओर से एक भूमिका निभाई। यह परियोजना ईश्वर को केंद्र बिंदु में रखते हुए शुरू की गई, जहां हम पत्थरों के निर्माण के पूर्व संबंधों को पुनर्निर्माण होता पाते हैं। इस भांति प्राचीन यरूशलेम को पुनः एक जन सामान्य भाषा प्राप्त हुई, जो एक रूपक नहीं बल्कि एकता का रूप था। मुख्यतः वह एकता जिसकी शुरुआत तब होती है जब सभी लोग अपनी भूमिका को वहन करते हैं और यह पहचानते हैं कि उनकी शक्ति प्रभु से आती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व नेता, नोबेल पुरस्कार विजेता और एआई विशेषज्ञ बोर्गो लाउदातो सी में एकत्रित होंगे। कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे उद्यान बोर्गो लाउदातो सी में वैटिकन 14 से 16 जुलाई तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु युद्ध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सभा की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर के 200 से अधिक जाने माने नेता और शांति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। पोप लियो 14वें के नए प्रेरित विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास से प्रेरित होकर, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव की सुरक्षा के लिए समर्पित है, यह सभा ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, बढ़ती अस्थिरता और परमाणु हथियार से माहौल लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यह पोप लियो के निरस्त्र एवं निशस्त्रीकृत शांति के दृष्टिकोण का हिस्सा है। 30 नोबेल पुरस्कार विजेता, 30 देशों के प्रतिनिधि, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकारें, 20 प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, जिनमें ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एएआरयू और एंथ्रोपिक शामिल हैं। साथ ही दुनिया के 30 प्रमुख विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान साथ मिलकर आज मानव के सामने मौजूद मुख्य चुनौतियों पर कॉन्क्लेव की शैली में बातचीत करेंगे, खासकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, नई तकनीकी के प्रबंधन, निरस्त्रीकरण एवं शांति की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्था के विकास पर चर्चा करने की उम्मीद है। चर्चा के केंद्र में एक नए वैश्विक मॉडल की खोज होगी, जो नए परिवर्तन, जिम्मेदारी और नैतिकता को मिला सके। घोषणा का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के लिए सिद्धांत एवं गाइडलाइन बनाना है, जो सहयोग, मानव सम्मान, पूर्ण मानव विकास एवं लोगों के बीच शांति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। वेनेजुएला में आए खतरनाक भूकंप के 3 हफ्ते बाद भी बचाव दल मलबा निकालने का काम जारी रखा है, क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। 24 जून को वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 4,490 हो गई है। वेनेजुएला के अधिकारियों ने रविवार देर शाम दक्षिणी अमेरिकी देश में आए खतरनाक भूकंपों पर ताज़ा अपडेट में कहा कि 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 18,000 लोग अब बेघर हो गए हैं। भूकंप के लगभग 3 हफ्ते बाद भी कई लोगों का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि परिवार मलबे में अपने प्रियजनों के शवों को ढूंढ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग 6,500 लोगों को बचाया गया है। बचाव की कोशिशें हृदय विदारक हैं। रॉयटर्स ने लागुएरा शहर, जो इस आपदा का सेंटर था, उसकी एक लड़की की कहानी बताई है, जो भूकंप के बाद 24 घंटों तक मलबे के नीचे होश में थी। बचाव करने वाले उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक खास उपकरण की आवश्यकता थी, जो कभी नहीं पहुंचा। उसके 17 साल की दोस्त मरिया ने रॉयटर को बताया कि जब भूकंप आया, तब वे दोनों अपने आने वाले स्नातक की पढ़ाई के लिए एक नृत्य का अभ्यास कर रही थी। 17 घंटे तक मलबे के नीचे फंसी मरिया को आखिरकार जिंदा बचा लिया गया। कार्यक्रम की तैयारी हेतु अभ्यास कर रही 10 में से 6 को बचा लिया गया है। इस आपदा के बाद ऐसी ही कई कहानियां सामने आई हैं। इस बीच विदेश से आए अग्निशमक और विशेष राहत दल, जिन्हें शुरुआती आपातकालीन कार्यों के दौरान राहत कार्य में लगाया गया था, अब अपने देश लौट रहे हैं। एक ब्रिटिश अग्निशामक ने BBC को बताया, हमें पता था कि कुछ लोग जिंदे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारा मलबा और अवशेष होने की वजह से हम समय पर वहां नहीं पहुंच सके और दुर्भाग्य से लोग गुजर गए। ब्रिटिश बचाव दल के एक अन्य सदस्य ने वेनेजुएला के लोगों की इतनी तकलीफ के बावजूद दिखाई गई हिम्मत एवं दरिया दिली के बारे बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने घर, दोस्त एवं परिवार खो दिए हैं, फिर भी उन्होंने हम पर मेहरबानी करने के लिए समय निकाला। वे हमें पानी, मिठाई, जो कुछ भी उनके पास था दे रहे थे। वे यह सिर्फ इसलिए दे रहे थे ताकि हम उन मुश्किल पलों से निकल सकें। उनकी मेहरबानी बहुत खास थी। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने अगले 6 महीनों में 1.3 मिलियन लोगों को मानवीय मदद देने के लिए लगभग $300 मिलियन की अर्जेंट अपील की है।
संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भूकंप से 6.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो वेनेजुएला के जीडीपी का लगभग 6% है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 5 साल से कम उम्र के 3.7 मिलियन अफगान बच्चों को कुपोषण का खतरा है और देश में सबसे अधिक भूख के दिनों में समय से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील की गई है, क्योंकि खाने की कमी और खराब पोषण देश के सबसे छोटे एवं सबसे कमजोर बच्चों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट पूरे देश में बच्चों के पोषण में खतरनाक गिरावट को दिखाती है और वार्षिक कुपोषण की अवधि तेज होने से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील करती है। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुसूचित जाति के क्रिश्चियन के अधिकारों और मणिपुर में मानवीय संकट पर चिंता जताई गई है। ज्ञापन पर सीबीसीआई के अध्यक्ष कार्डिनल एंटनी पुला एवं सीबीसीआई के महासचिव महाधर्मदक्ष अनिल कुट्टो के हस्ताक्षर हैं। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीबीसीआई के डिप्टी सेक्रेटरी फादर मैथ्यू कोइकल, कैथोलिक काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंटोस एंटनी और जोनाथन भी शामिल थे। सम्मेलन ने सरकार से प्रस्तावित संशोधन बिल और हाल ही में नोटिफाई किए गए नियमों को वापस लेने की अपील की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार, आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.ovolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना हाल ही में 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें लिखते हैं, यह अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समय की चुनौतियों का सामना अपने विचारों की स्पष्टता और उत्तरदायित्व में कैसे करते हैं। हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम पर्याप्त नियमावली को लागू करते हों, जो न्याय को स्थापित करने और तकनीकी शक्ति के विकृत प्रभाव पर रोक लाने का साधन बनता हो। इसके बावजूद यहाँ हम मुद्दे को सिर्फ नीति निर्धारण तक सीमित नहीं पाते हैं, जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने हमें सचेत कराया है। हमें अपने को सही अर्थ में पूछने की जरूरत है, जो शक्ति को अपने में वाहन करते हैं, हम उसका उपयोग किस रूप में करते हैं। हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि न्यूक्लियर शक्ति, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना की तकनीकी, हमारे अपने DNA का ज्ञान और दूसरी कई काबिलियतें जिन्हें हमने हासिल की है, जिनके पास यह ज्ञान है और खासकर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आर्थिक संसाधन, पूरी मानवता और पूरी दुनिया पर एक जबरदस्त दबदबा कायम किया है। अतीत में यह सरकार के ऊपर निर्भर करता था कि वे नवीनता के संबंध में दिशा निर्देशन जारी करें। आज यद्यपि विकास के मुख्य कर्ता धर्ता व्यक्तिगत रूप में मुख्यतः ट्रांसनेशनल पार्टियां हैं, जिनके पास कई सरकारों से ज्यादा संसाधन और दखल देने की क्षमता है। इस तरह तकनीकी शक्ति एक ऐसा रूप ले लेती है जो पहले कभी नहीं हुआ। यह ज्यादातर निजीकरण के रूप में होता है, जिससे ऐसी शक्ति को पहचानना, नियंत्रण करना और आम भलाई के लिए इस्तेमाल करना और भी मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, यही कारण है संत पापा लियो लिखते हैं कि हमारे लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम आत्म परीक्षण की एक साझा प्रक्रिया की शुरुआत करें, जो हम में होने वाले परिवर्तन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को पहचानने में मदद करेगा। यदि हम सिर्फ आकस्मिकताओं पर ध्यान देते हैं, तो हम इमरजेंसी के बाद आने वाले हालात से अपने लिए एक जोखिम को पाएंगे। हम एक तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन के दौर में जीवन यापन कर रहे हैं, एक परिवर्तन के युग में जिसमें कुछ लोग नई प्रौद्योगिकियों के भविष्य की होड़ में हैं, तो दूसरे इस मामले पर चिंतन करने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। वहीं अधिकांश लोग देखने और प्रतीक्षा करने में हैं, दूर से निरीक्षण कर रहे हैं और केवल सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में लगे हैं। इसी कारण से जरूरी सवाल हमारी अंतरात्माओं में उठते हैं और जिन्हें हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? किस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने की चाह रखते हैं? एक मानव समुदाय लोगों के रूप में हम किस दिशा में जाने का चुनाव करें। इन सवालों का जवाब देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के काल में अपने को सही दिशा में निर्देशित करने हेतु संत पापा लियो लिखते हैं, मैं धर्म ग्रंथ के दो दृश्यों को आपके मनस पटल में लाना चाहूंगा, बाबिल मीनार का निर्माण और यरूशलेम की दीवार का पुनर्निर्माण। बाबिल के मंदिर की कहानी उत्पत्ति ग्रंथ में आती है, मानवता की शुरुआत में, नोआ के पुत्रों की वंशावली के तुरंत बाद। शिनार की भूमि में स्थापित होने के बाद लोगों ने एक शहर और एक मीनार निर्माण करने का विचार किया जिसकी ऊंचाई स्वर्ग को छूती हो। यह धरती में भय को प्रसारित करता है। वे अपने में स्थायित्व और शक्ति को सुनिश्चित करने की चाह रखते हैं, उससे भी बढ़कर अपने लिए एक नाम हासिल करने की चाह। यह एक शानदार काम था, एक भाषा, एक तकनीकी, एक दिशा, लेकिन इस परियोजना में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था। इस परियोजना की शुरुआत ईश्वरीय सहमति के बिना हुई थी, जिसमें एक रूपता का सहयोग था जो विभिन्नताओं को खत्म करती और एकता के बदले एक रूपता को प्राथमिकता देती थी। जब एक शहर का निर्माण घमंड और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता में होता है, संचार का सिलसिला टूट जाता है, भाषा में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और लोगों में एक दूसरे को समझने की योग्यता खत्म हो जाती है, इसका परिणाम एकता नहीं बल्कि बिखराव होता है। बाबिल का मीनार इस भांति किसी भी प्रयास की सीमाओं को प्रकट करता है, जो चाहे कितना भी भव्य हो, जो आत्म पुष्टि से उत्पन्न होता है, दक्षता के लिए मानवीय गरिमा का त्याग करता है और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना स्वर्ग तक पहुंचने की इच्छा रखता है। श्रोताओं, इसके विपरीत नबी नहमिया की पुस्तिका हमारे लिए प्राचीन इसराइल के इतिहास की एक अति संवेदनशील स्थिति को प्रस्तुत करती है। बाबिलोन निर्वासन के उपरांत कुछ लोग यरूशलेम लौटकर आए, लेकिन शहर अब तक खंडहर की स्थिति में था। उसकी दीवारों को ढह दिया गया था और द्वारों को जला दिया गया था। नहमिया एक यहूदी जो फारसी राजा की सेवा में नियुक्त था, उसे अपने पैतृक शहर की दयनीय स्थिति की खबर मिली। अपने निर्णय और कार्य शुरू करने के पूर्व उन्होंने उपवास, प्रार्थना और लोगों के लिए निवेदन किए। इसके बाद उन्होंने राजा से यरूशलेम लौटने की अनुमति मांगी और वहां पहुंचने के बाद चुपचाप विध्वंस क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी ओर से निदानों को नहीं थोपा। उन्होंने परिवारों को बुलाया और दीवार के एक भाग का पुनः निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने उनकी बातों को सुना, उनकी कोशिशों का संचालन किया और कोई विरोध होने पर उनकी चर्चा की। यह वृतांत हमें यह दिखलाता है कि शहर का पुनर्जन्म कैसे हुआ। इसकी पहल किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई, लेकिन इसके लिए सभों ने अपने उत्तरदायित्वों को साझा किया। नर नारियां, पुरोहितगण, शिल्पकार, घरों के प्रधान और युवाओं, सभों ने अपनी ओर से एक भूमिका निभाई। यह परियोजना ईश्वर को केंद्र बिंदु में रखते हुए शुरू की गई, जहां हम पत्थरों के निर्माण के पूर्व संबंधों को पुनर्निर्माण होता पाते हैं। इस भांति प्राचीन यरूशलेम को पुनः एक जन सामान्य भाषा प्राप्त हुई, जो एक रूपक नहीं बल्कि एकता का रूप था। मुख्यतः वह एकता जिसकी शुरुआत तब होती है जब सभी लोग अपनी भूमिका को वहन करते हैं और यह पहचानते हैं कि उनकी शक्ति प्रभु से आती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व नेता, नोबेल पुरस्कार विजेता और एआई विशेषज्ञ बोर्गो लाउदातो सी में एकत्रित होंगे। कस्तेल गंदोल्फो के परमधाम पीठे उद्यान बोर्गो लाउदातो सी में वैटिकन 14 से 16 जुलाई तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु युद्ध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सभा की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर के 200 से अधिक जाने माने नेता और शांति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। पोप लियो 14 के नए प्रेरित विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास से प्रेरित होकर, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव की सुरक्षा के लिए समर्पित है, यह सभा ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, बढ़ती अस्थिरता और परमाणु हथियार से माहौल लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यह पोप लियो के निरस्त्र एवं निशस्त्रीकृत शांति के दृष्टिकोण का हिस्सा है। 30 नोबेल पुरस्कार विजेता, 30 देशों के प्रतिनिधि, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकारें, 20 प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, जिनमें ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एएआरयू और एंथ्रोपिक शामिल हैं। साथ ही दुनिया के 30 प्रमुख विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान साथ मिलकर आज मानव के सामने मौजूद मुख्य चुनौतियों पर कॉन्क्लेव की शैली में बातचीत करेंगे, खासकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, नई तकनीकी के प्रबंधन, निरस्त्रीकरण एवं शांति की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्था के विकास पर चर्चा करने की उम्मीद है। चर्चा के केंद्र में एक नए वैश्विक मॉडल की खोज होगी, जो नए परिवर्तन, जिम्मेदारी और नैतिकता को मिला सके। घोषणा का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के लिए सिद्धांत एवं गाइडलाइन बनाना है, जो सहयोग, मानव सम्मान, पूर्ण मानव विकास एवं लोगों के बीच शांति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। वेनेजुएला में आए खतरनाक भूकंप के 3 हफ्ते बाद भी बचाव दल मलबा निकालने का काम जारी रखा है, क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। 24 जून को वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 4,490 हो गई है। वेनेजुएला के अधिकारियों ने रविवार देर शाम दक्षिणी अमेरिकी देश में आए खतरनाक भूकंपों पर ताज़ा अपडेट में कहा कि 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 18,000 लोग अब बेघर हो गए हैं। भूकंप के लगभग 3 हफ्ते बाद भी कई लोगों का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि परिवार मलबे में अपने प्रियजनों के शवों को ढूंढ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग 6,500 लोगों को बचाया गया है। बचाव की कोशिशें हृदय विदारक हैं। रॉयटर ने लागुएरा शहर, जो इस आपदा का सेंटर था, उसकी एक लड़की की कहानी बताई है, जो भूकंप के बाद 24 घंटों तक मलबे के नीचे होश में थी। बचाव करने वाले उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक खास उपकरण की आवश्यकता थी, जो कभी नहीं पहुंचा। उसके 17 साल की दोस्त मरिया ने रॉयटर को बताया कि जब भूकंप आया, तब वे दोनों अपने आने वाले स्नातक की पढ़ाई के लिए एक नृत्य का अभ्यास कर रही थीं। 17 घंटे तक मलबे के नीचे फंसी मरिया को आखिरकार जिंदा बचा लिया गया। कार्यक्रम की तैयारी हेतु अभ्यास कर रही 10 में से 6 को बचा लिया गया है। इस आपदा के बाद ऐसी ही कई कहानियां सामने आई हैं। इस बीच विदेश से आए अग्निशमक और विशेष राहत दल, जिन्हें शुरुआती आपातकालीन कार्यों के दौरान राहत कार्य में लगाया गया था, अब अपने देश लौट रहे हैं। एक ब्रिटिश अग्निशामक ने बीबीसी को बताया, हमें पता था कि कुछ लोग जिंदे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारा मलबा और अवशेष होने की वजह से हम समय पर वहां नहीं पहुंच सके और दुर्भाग्य से लोग गुजर गए। ब्रिटिश बचाव दल के एक अन्य सदस्य ने वेनेजुएला के लोगों की इतनी तकलीफ के बावजूद दिखाई गई हिम्मत एवं दरिया दिली के बारे बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने घर, दोस्त एवं परिवार खो दिए हैं, फिर भी उन्होंने हम पर मेहरबानी करने के लिए समय निकाला। वे हमें पानी, मिठाई, जो कुछ भी उनके पास था दे रहे थे। वे यह सिर्फ इसलिए दे रहे थे ताकि हम उन मुश्किल पलों से निकल सकें।
उनकी मेहरबानी बहुत खास थी। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने अगले 6 महीनों में 1.3 मिलियन लोगों को मानवीय मदद देने के लिए लगभग $300 मिलियन की अर्जेंट अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भूकंप से $6.7 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो वेनेजुएला के GDP का लगभग 6% है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 5 साल से कम उम्र के 3.7 मिलियन अफगान बच्चों को कुपोषण का खतरा है और देश में सबसे अधिक भूख के दिनों में समय से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील की गई है, क्योंकि खाने की कमी और खराब पोषण देश के सबसे छोटे एवं सबसे कमजोर बच्चों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट पूरे देश में बच्चों के पोषण में खतरनाक गिरावट को दिखाती है और वार्षिक कुपोषण की अवधि तेज होने से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील करती है। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुसूचित जाति के ख्रिस्तियों के अधिकारों और मणिपुर में मानवीय संकट पर चिंता जताई गई है। ज्ञापन पर CBCI के अध्यक्ष कार्डिनल एंटनी पुला एवं CBCI के महासचिव महाधर्मदक्ष अनिल कुट्टो के हस्ताक्षर हैं। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में CBCI के डिप्टी सेक्रेटरी फादर मैथ्यू कोइकल, कैथोलिक काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंटोस एंटनी और जोनाथन भी शामिल थे। सम्मेलन ने सरकार से प्रस्तावित संशोधन बिल और हाल ही में नोटिफाई किए गए नियमों को वापस लेने की अपील की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार, आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: भी दौड़ और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी।

प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं परमाणु युद्ध पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सभा पर एक चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज

0: विश्वभर के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की तीन दिवसीय सभा रोम के निकट कस्तेल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में हो रही है। 14 जुलाई को शुरू हुई सभा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं परमाणु युद्ध पर केंद्रित है। सभा के पहले दिन हमारी दुनिया पर असर डालने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों पर चिंतन की गई। 200 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ तीन दिवसीय सभा में भाग लेने के लिए मंगलवार 14 जुलाई को कस्तेल गंदोल्फो स्थित पोप की वाटिका में चीड़ के पेड़ों और जैतून के बागों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं परमाणु युद्ध पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए।
1: In course of history, power has always demanded responsibility and governance. And intelligence is no exception. So if you have to use intelligence as part of our journey, the question remains, how can we govern it properly?
0: गुरुवार 16 जुलाई तक चलने वाली यह सभा पोप लियो 14वें के प्रेरित विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास से प्रेरित है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। सभा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु और स्वायत्त हथियारों, नए डिजिटल नवाचार और डिजिटल विकास के उभरते मॉडल के जमाने में बिना हथियार एवं निरस्त्रीकृत शांति पर रोम घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त होगी। इसका मकसद सहयोग, मानव प्रतिष्ठा, समग्र विकास एवं शांति पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश पेश करना है। सभा के पहले दो दिन के कार्यक्रम कस्तेल गंदोल्फो में पोप के उद्यान में बोर्गो लाउदातो सी या लाउदातो सी गांव में होंगे, जबकि तीसरे दिन के कार्यक्रम रोम स्थित कंपीदोलियो में होंगे। समग्र मानव विकास के लिए गठित परमधम पीठे भी

0: के प्रो प्रीफेक्ट एवं उच्च शिक्षा के लिए बोरकुला उदातिर सी सेंटर के महानिदेशक ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में कहा, हम इतिहास के ऐसे समय में एकत्रित हुए हैं जो बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से पहचाना जाता है। उन्होंने बतलाया कि कैसे उन मुद्दों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा है। इस बारे में उन्होंने इस सभा और अलग अलग क्षेत्रों में बातचीत को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब नई खोज की रफ्तार अक्सर सोच विचार से आगे बढ़ रही है, दुनिया को ऐसे साझा सिद्धांतों की जरूरत है जो विकास को असली मानवीय मकसद की ओर निर्देशित कर सके। सभा में हिस्सा ले रहे डोमस कम्युनिस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष कार्डिनल सिल्वानो मरिया तोमासी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा, यह सभा सिर्फ खतरों का विश्लेषण करने के लिए एकत्रित नहीं हुई है, यह उम्मीद जगाने, यह दिखाने के लिए एकत्रित हुई है कि बातचीत अभी भी संभव है, कि ज्ञान के साथ समझदारी भी होनी चाहिए, कि मानव ने अपने भविष्य को चलाने की क्षमता नहीं खोई है। उन्होंने आगे कहा, आने वाली पीढ़ियां यह कह सकें कि ऐसे समय में जब मानव के भाग्य में बहुत ज्यादा ताकत थी, समझदार महिलाओं और पुरुषों ने टकराव के बजाय सहयोग, डर के बजाय बातचीत और हार मानने के बजाय उम्मीद को चुना। शुरुआती सत्र हमारे आम घर के भविष्य के लिए मनीफिका उमानी तास विषय पर आधारित था, क्योंकि ज्यादातर चर्चाएं पोप लियो चौदहवें के प्रथम प्रेरित विश्व पत्र से प्रेरित हैं, जो मई में प्रकाशित हुए थे। सभा की शुरुआत कार्डिनल अंजेलो फर्नांडिस अर्तिमे के भाषण से हुई, जो समर्पित जीवन के लिए गठित परम धम्म पीठ विभाग के प्रो प्रीफेक्ट हैं। उन्होंने पोप के विश्व पत्र का अवलोकन प्रदान किया।
1: पापा लियोने 14वें richiama la comunità scientifica, i governi e le imprese a un esercizio di responsabilità condivisa.
0: इसके बाद कई जाने माने वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति जुआन मानुएल संतोस भी शामिल थे, जिन्होंने मैग्निफिका उमानी तास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे को खत्म करने के पोप लियो चौदहवें के आह्वान का स्वागत किया और कहा कि केवल इसी भावना से काम करके ही हम मानवता के सामने आने वाली सभी अस्तित्व के खतरों से निपटने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी प्रबंधन के बिना यह सुनिश्चित करना मुश्किल और नामुमकिन होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव गरिमा, जिम्मेदारी, जवाबदेही और कानून के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अच्छाई के लिए एक ताकत बने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं बांग्लादेश के पूर्व प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि हम एक सभ्यता के अंत और अगली सभ्यता की शुरुआत के दौर से गुजर रहे हैं और दुनिया का भविष्य बनाने में युवाओं को शामिल करना कितना जरूरी है। इसी सत्र में दूसरे वक्ताओं में एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव डॉक्टर आग्नेस कालामार्ट, सुरक्षित और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के संस्थापक एवं बोर्ड सदस्य डॉक्टर अमीर बनिफ तेमी, परमाणु युद्ध के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकों के सह संस्थापक प्रोफेसर जेम्स मुलर, पगवाश सम्मेलन के महासचिव प्रोफेसर कारेन होलबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एवं अध्यक्ष प्रोफेसर डेविड ग्रोस शामिल थे। सुबह और दोपहर में अन्य कई चर्चाएं हुईं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता कब मानव नियंत्रण से बाहर हो जाता है जैसे टॉपिक पर फोकस दिया गया। कई वक्ताओं ने भाषण दिए, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मरिया रेसा और एंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट या डीप माइंड जैसे संस्थाओं के AI शोधकर्ता शामिल थे, जिन्होंने इन विषयों पर अलग अलग नजरिए पेश किए। बोरकुला उदातो सी में आयोजित नोबेल पुरस्कार विजेताओं की 3 दिवसीय सभा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु हथियारों और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों का समाधान केवल तकनीकी प्रगति से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा जिम्मेदारी से संभव है। इस सम्मेलन का मुख्य संदेश मानव गरिमा, शांति और जिम्मेदार तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। सभा के अंत में प्रस्तावित रोम घोषणा के माध्यम से AI के उत्तरदायी उपयोग परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक सहयोग के लिए साझा सिद्धांत स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा, जो भविष्य की अधिक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण की आशा जगाता है। श्रोताओं, बुधवार के कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सभा पर एक चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। इटालियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने यूक्रेन में 4 दिनों का दौरा शुरू किया है। कार्डिनल जुप्पी ने यूक्रेन के लवीव इलाके के एक हिरासत केंद्र जाखिद में कैदियों के लिए 3 तोहफे दिए, जहां रूसी सेना के लिए लड़ते हुए पकड़े गए सैनिकों को रखा जाता है की रिंग, उस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप अपने घर की चाबी इस रिंग में लगाएंगे, ताकि आप अपना घर का दरवाजा खोल सकें और अपने प्रियजनों को गले लगा सकें। सालुस पोपोली रोमानी का एक पवित्र कार्ड, ख्रिस्तियों के लिए हमारी माँ की छवि, लेकिन सभी के लिए उम्मीद की छवि, और संत पापा लियो 14वें की एक तस्वीर, जिन्होंने मुझे यह बताने के लिए भेजा है कि वे शांति के लिए और युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरे से युद्ध के दौरान यूक्रेन में कार्डिनल जुप्पी के दूसरे मिशन की शुरुआत हुई। संत पापा फ्रांसिस के कहने पर जून 2023 में उनके पहले मिशन में मास्को, वाशिंगटन और बीजिंग जाने से पहले कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और दूसरे राजनीतिक और कलिसियाई नेताओं के साथ मीटिंग थी। उस मानवीय मिशन का मकसद युद्ध से प्रभावित लोगों के साथ कलीसिया की करीबी दिखाना था, साथ ही देश से निकाले गए यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने, कैदियों की अदला बदली में मदद करने और मारे गए लोगों को वापस लाने की कोशिशों में मदद करना था। कीव जाने से पहले कार्डिनल जुप्पी प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास और वाटिकन में यूक्रेन के राजदूत एंड्री यूराश के साथ हिरासत केंद्र का दौरा किया, कैदियों के रहने की जगह, प्रार्थनालय और चिकित्सा कमरे का दौरा किया। राजदूत यूराश ने कहा कि यह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से है और उन आगंतुकों के लिए खुली है जो कैदियों को जिन हालात में रखा जाता है उन्हें देखना चाहते हैं। हिरासत केंद्र के प्रार्थनालय में प्रार्थना के साथ अपनी बात खत्म करते हुए कार्डिनल जुप्पी ने कहा, आइए हम प्रार्थना करें कि आपको जल्द ही घर का रास्ता मिल जाए, यह सब खत्म हो जाए और आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अपने दिल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हमें हर उस बुराई को बाहर निकालना होगा जो अंदर है, और ईश्वर हमेशा हमें उम्मीद देते हैं। आइए हम अपने अंदर कभी भी बुराई को बढ़ने ना दें और ईश्वर हमेशा हमें इससे उबरने में मदद करेंगे। उधर स्थानीय अधिकारियों, मुस्लिम धार्मिक नेताओं, इस्लामिक मदरसों के छात्रों और समुदाय के लोगों के तुरंत दखल से पाकिस्तान कराची में एक ख्रिस्तीय परिवार के खिलाफ हिंसा को रोकने में मदद मिली, जब कुरान की अपवित्रीकरण के बिना सबूत वाले आरोपों से तनाव बढ़ गया था। वाटिकन न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तान में शांति और न्याय के लिए कैथोलिक आयोग के कार्यकारी निदेशक नईम यूसुफ गिल ने कहा कि 9 जुलाई को बिल्डिंग टाउन में जो हुआ उससे पता चलता है कि कैसे समय पर कार्यवाही और अलग अलग धर्मों का सहयोग दुखद घटना को रोकने में मदद कर सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में ख्रिस्तीय तब भी खुद को कमजोर महसूस करते हैं जब भी ईश निंदा के आरोप सामने आते हैं। गिल के मुताबिक रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने पवित्र कुरान का एक पेज स्थानीय दुकानदार को मेल कर दिया था। उस पेज पर कथित तौर पर बालिया टाउन के एक कजाफी कॉलोनी के रहने वाले एक ख्रिस्तीय आजिम जावेद और उसकी मां की तस्वीरें हैं। इसके तुरंत बाद एक हिंसक भीड़ ने आरोपी अजीम के घर को घेर लिया, परंतु सरकार और प्रशासन ने समय पर कार्यवाही की, प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि पुलिस गहन जांच करेगी और दोषियों का पता लगाएगी, परिणाम स्वरूप विरोध बंद कर दिया गया। गिल ने माना कि ख्रिस्तीय परिवारों की रक्षा के लिए मुस्लिम धार्मिक नेताओं, इस्लामिक मदरसे के छात्रों और स्थानीय नेताओं की दखल उम्मीद से परे थी। उन्होंने कहा कि इसका स्वागत किया गया और बहुत हैरानी के साथ इसकी तारीफ की गई और उम्मीद जताई कि यह घटना धीरे धीरे समुदायों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने का रास्ता बनाएगी।
उधर तेहरान ने कुवैत, भारत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार करके जवाब दिया। विवाद का मुख्य मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए घोषित 20% पथ कर से पीछे हट गए हैं और क्षेत्रीय देशों के साथ व्यापार समझौतों का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के तटीय शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान ने कई खाड़ी और मध्य पूर्वी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर नए हमले शुरू किए हैं। यह संघर्ष समुद्र के रणनीतिक विस्तार पर नियंत्रण पर केंद्रित है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वाशिंगटन का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी फिर से लागू कर दी है। तेहरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों के खिलाफ नए हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकर और 1 नॉर्वेजियन टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस बीच ट्रंप पिछले सोमवार को दिए अपने प्रस्ताव से पीछे हट गए हैं, जिसमें स्ट्रेट से गुजरने वाले माल जहाज पर 20% टोल लगाने का प्रस्ताव था। कल उन्होंने कहा कि वह इसे वाणिज्य और निवेश समझौते में बदलना चाहते हैं, जो अलग अलग खाड़ी देश अमेरिका में करेंगे। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि वे आने वाले दिनों में देश पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ईरान के महत्वपूर्ण संरचनाओं पर हमला करने की घोषणा करेंगे, सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट कर देंगे, जब तक कि तेहरान बातचीत के टेबल पर आने का फैसला नहीं करता। उधर कोलंबिया में विस्थापन का संकट आज की दुनिया की सबसे गंभीर लेकिन सबसे कम दिखाई देने वाली मानवीय संकट काल में से एक है। अपने बड़े पैमाने के बावजूद यह दक्षिण अमेरिकी देश नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद NRC की नज़रअंदाज किए गए विस्थापन संकटों की सालाना लिस्ट में 3रे नंबर पर है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं परमाणु युद्ध पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सभा पर एक चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज

0: विश्वभर के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की 3 दिवसीय सभा रोम के निकट कस्तेल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में हो रही है। 14 जुलाई को शुरू हुई सभा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं परमाणु युद्ध पर केंद्रित है। सभा के पहले दिन हमारी दुनिया पर असर डालने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों पर चिंतन की गई। 200 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ 3 दिवसीय सभा में भाग लेने के लिए मंगलवार 14 जुलाई को कस्तेल गंदोल्फो स्थित पोप की वाटिका में चीड़ के पेड़ों और जैतून के बागों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं परमाणु युद्ध पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए।
1: In course of history, power has always demanded responsibility and governance. And intelligence is no exception. So if you have to use intelligence as part of our journey, the question remains, how can we govern it properly?
0: गुरुवार 16 जुलाई तक चलने वाली यह सभा पोप लियो 14वें के प्रेरित विश्व पत्र मैनिफिका हुमानिटास से प्रेरित है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। सभा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु और स्वायत्त हथियारों, नए डिजिटल नवाचार और डिजिटल विकास के उभरते मॉडल के जमाने में बिना हथियार एवं निरस्त्रीकृत शांति पर रोम घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त होगी। इसका मकसद सहयोग, मानव प्रतिष्ठा, समग्र विकास एवं शांति पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश पेश करना है। सभा के पहले 2 दिन के कार्यक्रम कस्तेल गंदोल्फो में पोप के उद्यान में बोर्गो लाउदातो सी या लाउदातो सी गांव में होंगे, जबकि 3रे दिन के कार्यक्रम रोम स्थित कंपिदोलियो में होंगे। समग्र मानव विकास के लिए गठित परमधम पीठे विभाग के प्रो प्रीफेक्ट एवं उच्च शिक्षा के लिए बोर्गो लाउदातो सी सेंटर के महानिदेशक ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में कहा,
2: sembravano impensabili.
0: हम इतिहास के ऐसे समय में एकत्रित हुए हैं जो बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से पहचाना जाता है। उन्होंने बतलाया कि कैसे उन मुद्दों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा है। इस बारे में उन्होंने इस सभा और अलग अलग क्षेत्रों में बातचीत को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब नई खोज की रफ्तार अक्सर सोच विचार से आगे बढ़ रही है, दुनिया को ऐसे साझा सिद्धांतों की जरूरत है जो विकास को असली मानवीय मकसद की ओर निर्देशित कर सके। सभा में हिस्सा ले रहे डोमस कम्युनिस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष कार्डिनल सिल्वानो मरिया तोमासी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा, यह सभा सिर्फ खतरों का विश्लेषण करने के लिए एकत्रित नहीं हुई है, यह उम्मीद जगाने, यह दिखाने के लिए एकत्रित हुई है कि बातचीत अभी भी संभव है, कि ज्ञान के साथ समझदारी भी होनी चाहिए, कि मानव ने अपने भविष्य को चलाने की क्षमता नहीं खोई है। उन्होंने आगे कहा, आने वाली पीढ़ियां यह कह सकें कि ऐसे समय में जब मानव के भाग्य में बहुत ज्यादा ताकत थी, समझदार महिलाओं और पुरुषों ने टकराव के बजाय सहयोग, डर के बजाय बातचीत और हार मानने के बजाय उम्मीद को चुना। शुरुआती सत्र हमारे आम घर के भविष्य के लिए मैनिफिका हुमानिटास विषय पर आधारित था, क्योंकि ज्यादातर चर्चाएं पोप लियो 14वें के प्रथम प्रेरित विश्व पत्र से प्रेरित हैं, जो मई में प्रकाशित हुई थी। सभा की शुरुआत कार्डिनल अंजेलो फर्नांडिस अर्तिमे के भाषण से हुई, जो समर्पित जीवन के लिए गठित परमधम पीठ विभाग के प्रो प्रीफेक्ट हैं। उन्होंने पोप के विश्व पत्र का अवलोकन प्रदान किया।
2: पापा लियोने 14वें richiama la comunità scientifica, i governi e le imprese a un esercizio di responsabilità condivisa.
0: इसके बाद कई जाने माने वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति जुआन मानुएल संतोस भी शामिल थे, जिन्होंने मैनिफिका हुमानिटास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे को खत्म करने के पोप लियो 14वें के आह्वान का स्वागत किया और कहा कि केवल इसी भावना से काम करके ही हम मानवता के सामने आने वाली सभी अस्तित्व के खतरों से निपटने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी प्रबंधन के बिना यह सुनिश्चित करना मुश्किल और नामुमकिन होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव गरिमा, जिम्मेदारी, जवाबदेही और कानून के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अच्छाई के लिए एक ताकत बने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं बांग्लादेश के पूर्व प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि हम एक सभ्यता के अंत और अगली सभ्यता की शुरुआत के दौर से गुजर रहे हैं और दुनिया का भविष्य बनाने में युवाओं को शामिल करना कितना जरूरी है। इसी सत्र में दूसरे वक्ताओं में एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव डॉक्टर आग्नेस कालामार्ट, सुरक्षित और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के संस्थापक एवं बोर्ड सदस्य डॉक्टर अमीर बनिफ तेमी, परमाणु युद्ध के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकों के सह संस्थापक प्रोफेसर जेम्स मुलर, पगवाश सम्मेलन के महासचिव प्रोफेसर कारेन होलबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एवं अध्यक्ष प्रोफेसर डेविड ग्रोस शामिल थे। सुबह और दोपहर में अन्य कई चर्चाएं हुईं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता कब मानव नियंत्रण से बाहर हो जाता है जैसे टॉपिक पर फोकस दिया गया। कई वक्ताओं ने भाषण दिए, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मरिया रेसा और एंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट या डीप माइंड जैसे संस्थाओं के AI शोधकर्ता शामिल थे, जिन्होंने इन विषयों पर अलग अलग नजरिए पेश किए। बोरगुलाउदातो सी में आयोजित नोबेल पुरस्कार विजेताओं की 3 दिवसीय सभा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु हथियारों और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों का समाधान केवल तकनीकी प्रगति से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा जिम्मेदारी से संभव है। इस सम्मेलन का मुख्य संदेश मानव गरिमा, शांति और जिम्मेदार तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। सभा के अंत में प्रस्तावित रोम घोषणा के माध्यम से AI के उत्तरदायी उपयोग, परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक सहयोग के लिए साझा सिद्धांत स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा जो भविष्य की अधिक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण की आशा जगाता है। श्रोताओं, बुधवार के कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सभा पर एक चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। इटालियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने यूक्रेन में 4 दिनों का दौरा शुरू किया है। कार्डिनल जुप्पी ने यूक्रेन के लवीव इलाके के एक हिरासत केंद्र जाखिद में कैदियों के लिए 3 तोहफे दिए, जहां रूसी सेना के लिए लड़ते हुए पकड़े गए सैनिकों को रखा जाता है की रिंग, उस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप अपने घर की चाबी इस रिंग में लगाएंगे, ताकि आप अपना घर का दरवाजा खोल सकें और अपने प्रियजनों को गले लगा सकें। सालुस पोपोली रोमानी का एक पवित्र कार्ड, ख्रिस्तियों के लिए हमारी माँ की छवि, लेकिन सभी के लिए उम्मीद की छवि, और संत पापा लियो 14वें की एक तस्वीर, जिन्होंने मुझे यह बताने के लिए भेजा है कि वे शांति के लिए और युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरे से युद्ध के दौरान यूक्रेन में कार्डिनल जुप्पी के दूसरे मिशन की शुरुआत हुई। संत पापा फ्रांसिस के कहने पर जून 2023 में उनके पहले मिशन में मॉस्को, वाशिंगटन और बीजिंग जाने से पहले कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और दूसरे राजनीतिक और कलिसियाई नेताओं के साथ मीटिंग थी। उस मानवीय मिशन का मकसद युद्ध से प्रभावित लोगों के साथ कलीसिया की करीबी दिखाना था, साथ ही देश से निकाले गए यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने, कैदियों की अदला बदली में मदद करने और मारे गए लोगों को वापस लाने की कोशिशों में मदद करना था। कीव जाने से पहले कार्डिनल जुप्पी प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास और वाटिकन में यूक्रेन के राजदूत एंड्री यूराश के साथ हिरासत केंद्र का दौरा किया, कैदियों के रहने की जगह, प्रार्थनालय और चिकित्सा कमरे का दौरा किया। राजदूत यूराश ने कहा कि यह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से है और उन आगंतुकों के लिए खुली है जो कैदियों को जिन हालात में रखा जाता है उन्हें देखना चाहते हैं। हिरासत केंद्र के प्रार्थनालय में प्रार्थना के साथ अपनी बात खत्म करते हुए कार्डिनल जुप्पी ने कहा, आइए हम प्रार्थना करें कि आपको जल्द ही घर का रास्ता मिल जाए, यह सब खत्म हो जाए और आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अपने दिल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हमें हर उस बुराई को बाहर निकालना होगा जो अंदर है, और ईश्वर हमेशा हमें उम्मीद देते हैं। आइए हम अपने अंदर कभी भी बुराई को बढ़ने ना दें और ईश्वर हमेशा हमें इससे उबरने में मदद करेंगे। उधर स्थानीय अधिकारियों, मुस्लिम धार्मिक नेताओं, इस्लामिक मदरसों के छात्रों और समुदाय के लोगों के तुरंत दखल से पाकिस्तान कराची में एक ख्रिस्तीय परिवार के खिलाफ हिंसा को रोकने में मदद मिली, जब कुरान की अपवित्रीकरण के बिना सबूत वाले आरोपों से तनाव बढ़ गया था। वाटिकन न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तान में शांति और न्याय के लिए कैथोलिक आयोग के कार्यकारी निदेशक नईम यूसुफ गिल ने कहा कि 9 जुलाई को बिल्डिंग टाउन में जो हुआ उससे पता चलता है कि कैसे समय पर कार्यवाही और अलग अलग धर्मों का सहयोग दुखद घटना को रोकने में मदद कर सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में ख्रिस्तीय तब भी खुद को कमजोर महसूस करते हैं जब भी ईश निंदा के आरोप सामने आते हैं। गिल के मुताबिक रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने पवित्र कुरान का एक पेज स्थानीय दुकानदार को मेल कर दिया था। उस पेज पर कथित तौर पर बालिया टाउन के एक कजाफी कॉलोनी के रहने वाले एक ख्रिस्तीय आजिम जावेद और उसकी मां की तस्वीरें हैं। इसके तुरंत बाद एक हिंसक भीड़ ने आरोपी अजीम के घर को घेर लिया, परंतु सरकार और प्रशासन ने समय पर कार्यवाही की। प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि पुलिस गहन जांच करेगी और दोषियों का पता लगाएगी। परिणाम स्वरूप विरोध बंद कर दिया गया। गिल ने माना कि ख्रिस्तीय परिवारों की रक्षा के लिए मुस्लिम धार्मिक नेताओं, इस्लामिक मदरसे के छात्रों और स्थानीय नेताओं की दखल उम्मीद से परे थी। उन्होंने कहा कि इसका स्वागत किया गया और बहुत हैरानी के साथ इसकी तारीफ की गई और उम्मीद जताई कि यह घटना धीरे धीरे समुदायों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने का रास्ता बनाएगी।
उधर तेहरान ने कुवैत, भारत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार करके जवाब दिया। विवाद का मुख्य मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए घोषित 20% पथ कर से पीछे हट गए हैं और क्षेत्रीय देशों के साथ व्यापार समझौतों का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के तटीय शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान ने कई खाड़ी और मध्य पूर्वी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर नए हमले शुरू किए हैं। यह संघर्ष समुद्र के रणनीतिक विस्तार पर नियंत्रण पर केंद्रित है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वाशिंगटन का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी फिर से लागू कर दी है। तेहरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों के खिलाफ नए हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकर और 1 नॉर्वेजियन टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस बीच ट्रंप पिछले सोमवार को दिए अपने प्रस्ताव से पीछे हट गए हैं, जिसमें स्ट्रेट से गुजरने वाले माल जहाज पर 20% टोल लगाने का प्रस्ताव था। कल उन्होंने कहा कि वह इसे वाणिज्य और निवेश समझौते में बदलना चाहते हैं, जो अलग अलग खाड़ी देश अमेरिका में करेंगे। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि वे आने वाले दिनों में देश पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ईरान के महत्वपूर्ण संरचनाओं पर हमला करने की घोषणा करेंगे, सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट कर देंगे, जब तक कि तेहरान बातचीत के टेबल पर आने का फैसला नहीं करता। उधर कोलंबिया में विस्थापन का संकट आज की दुनिया की सबसे गंभीर लेकिन सबसे कम दिखाई देने वाली मानवीय संकट काल में से एक है। अपने बड़े पैमाने के बावजूद यह दक्षिण अमेरिकी देश नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद NRC की नज़रअंदाज किए गए विस्थापन संकटों की सालाना लिस्ट में 3रे नंबर पर है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।